0: Tune in to Friday with Richa, only at 5 EBI 103.1 FM. Relax with Bollywood hits and immerse yourself in the vibrant sounds of Bollywood. Join Richa for a musical journey at 5 p.m. every Friday. Don't miss out.
1: कुछ लोग चले जाते हैं मगर जाते नहीं, उनकी आवाज़ रह जाती है, उनकी आंखें रह जाती हैं, उनके किरदार रह जाते हैं और रह जाती है उनकी वो अदायगी जिसे वक्त भी भुला नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा। आज हम किसी फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे, कोई बॉलीवुड गॉसिप नहीं होगी। आज हम याद करेंगे एक ऐसे कलाकार को जिसने हमें सिर्फ फिल्मों में कैरेक्टर्स नहीं दिए बल्कि हमें इंसान के कई चेहरे दिखाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नाना

बचपन से ये भजन सुनते गाते बड़ी हुई, एक एक शब्द जैसे दिल की गहराइयों को छू जाता है। प्रार्थना ऐसी कि विश्वास दुगना कर दे। अंकुश फिल्म जिसमें नाना पाटेकर ने अपने किरदार से एक ऐसी छाप छोड़ी दोस्तों जो अमर हो गई। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का सफर फिल्मी नहीं दोस्तों, असली जिंदगी की किताब था। 8 अक्टूबर 2026 सुबह 5:20 डोना पावला गोवा में 75 साल के नाना पाटेकर अपने घर में बेहोश मिले। मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 45 मिनट तक सीपीआर किया, पर वो वापस नहीं आ पाए। 4 दिन पहले ही वो इसी गोवा के मंच पे सफेद कुर्ता सफेद गमछा पहने बड़ी बेपाकी से कह रहे थे, हम सबको एक ना एक दिन जाना ही है, मुझे नहीं पता कि मैं कल यहाँ रहूंगा या नहीं। और आज वो नहीं है। 1951 में मुरुड़ जजीरा में जन्मे विश्वनाथ पाटेकर को बचपन में ही घर की जिम्मेदारी मिल गई थी दोस्तों। पिता का धंधा बंद हो गया था, तो 13 साल की उम्र में ही स्कूल के बाद मुंबई की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है ना, उसमें वो पेंट करने लगे थे। फिल्मों के पोस्टर रंगते थे। 35 रुपए महीना और एक वक्त का खाना, बस इतने में ही उनका घर चलता था। ज्यादा चीजें इकट्ठे करने के वो शौकीन कभी भी नहीं थे। उनके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि नाना पाटेकर क्या थे ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी ईमानदारी और सादगी की बात होगी तो मुरुड़ जजीरा के इस नट सम्राट का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। जी हाँ, हर फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान डाल देने वाले एक्टर नाना पाटेकर साहब का।

0: जाते।
1: अमित कुमार और सुदेश भोसले की आवाज में ये गाना था दोस्तों, फिल्म कोहराम जो कि 1999 में आई थी। अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, तब्बू और जया प्रदा इस मूवी में नजर आई थी और बहुत ही मजेदार गाना था ये, हम हैं बनारस के भैया। तो चलिए उनके कुछ फिल्मी सफर और लाइफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नाना जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, थिएटर और फिर 1978 में फिल्म गमन से उनके जीवन की शुरुआत हुई और फिल्म सफर जो उनका रहा वो परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी के लिए 3 नेशनल अवार्ड और 2013 में वो पद्मश्री तक उनको लेके गया। उनका एक्टिंग का स्कूल ही अलग था। वो जब डायलॉग बोलते थे तो वो डायलॉग के बीच का जो सन्नाटा होता है ना, उसमें एक्टिंग करते थे, और जब वो गंभीर होते थे या किसी बागी किरदार को वो पर्दे पर लेकर आते थे तो उनका गुस्सा, उनके सिस्टम की चिढ़ हम सब खुद महसूस कर पाते थे।
2: कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से, हंसो।
1: क्रांतिवीर मूवी का ये डायलॉग दोस्तों आज भी लोगों को रोमांचित कर जाता है। नाना पाटेकर की तारीफ में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है, क्यों मानते हैं ना आप भी। नाना पाटेकर बाहर से जितने सख्त, गुस्सैल और अड़ियर दिखते थे दोस्तों, अंदर से वो उतने ही भावुक, संवेदनशील और मददगार थे। वे बॉलीवुड के उन गिने चुने कलाकारों में से एक हैं जो कभी मुखौटा पहनकर नहीं जिए। उनका जो मिजाज पर्दे पर दिखता था, असल जिंदगी में भी वो वैसे ही बेबाक और सीधे मुंह सच बोलने वाले इंसान थे। वे फिल्मी पार्टियों से दूर रहते थे और किसी को खुश करने के लिए कभी झूठी तारीफ नहीं करते थे। आइए सुनवाती हूँ उनकी एक और फिल्म खामोशी का ये प्यारा खूबसूरत रोमांटिक।

लेकिन नाना सिर्फ रियल लाइफ में हीरो नहीं थे दोस्तों, वे 1988 में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने। इसके बाद 1991 में अपनी फिल्म प्रहार के लिए उन्होंने मराठा लाइट के साथ 3 साल की असली मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी, और कारगिल युद्ध में जब दुश्मन हमारे सिर पर आकर बैठ गए थे तब वे खुद युद्ध मोर्चे पर गए और जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल तक वो पहुंचे और 2013 में रिटायर हुए। वो फिल्मी दुनिया में रहे लेकिन अंदर से हमेशा एक किसान ही रहे। वो अपने फार्म हाउस पर खेती करते थे और जो उगता उसे बेचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। उनकी जिंदगी का एक किस्सा जो उन्हें सबसे अलग बनाता है दोस्तों, कि एक बार वो 1.5 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी लेने जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने टीवी पर किसानों की आत्महत्या की खबरें देखी। तब वो गाड़ी खरीदने शोरूम नहीं गए, उसी पैसों से उन्होंने 15-15 हज़ार के चेक बनाए और खुद महाराष्ट्र के गाँव में जाकर बांट दिए। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो फिर मकरंद अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन बनाया, जिसके द्वारा आज भी सूखा पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है और हजारों गांवों में पानी पहुंचाया जाता है। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। चाहते तो आलीशान बंगले में रह सकते थे, पर वो अपनी माँ के साथ अंधेरी के एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहे, जमीन पर बैठकर खाना खाया और शूटिंग के दौरान अपने हाथ से सबके

0: आपने ट्यून किया है 5 EBI 103.1 FM साथ में मैं हूँ रिचा। एवरी फ्राइडे शाम 5 बजे एडलेट टाइम आप सुनते हैं मुझे यानी कि रिचा को। तो दोस्तों आज हम बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता यानी कि एक्टर नाना पाटेकर के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वो 75 इयर्स के। तो दोस्तों उनके लिए ये दो लाइन कहना चाहूँगी, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नम आँखों से नाना जी आपको अंतिम विदाई, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 5 EBI 103.1 FM। यू आर लिसनिंग टू फ्राइडे विद रिचा ओनली एट 5 EBI 103.1 FM
1: फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एट www.5ebi.com.au also on demand at
0: www.5ebi.com.au under Indian Hindi।
2: Join us on Friday with Richa।
0: 103.1 FM ट्यून किया है आपने फ्राइडे विद रिचा और आज मैं आपको सुनवा रही हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर हाल ही में यानी कि अभी 8 अक्टूबर को हम सब को छोड़कर चले गए। उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उन्होंने हमारे को अलविदा कहा। लेकिन दोस्तों उनके बारे में ये बहुत ही फेमस है कि वो जो भी जीवन जीते थे यानी कि जो भी वो चरित्र अभिनय करते थे उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे। क्या कभी सोचा है आपने कि एक एक्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? गुड लुक्स, पॉपुलैरिटी, अवार्ड्स या फिर डायलॉग डिलीवरी? शायद ये सपना। लेकिन नाना पाटेकर के मामले में एक और चीज़ थी दोस्तों, ट्रुथफुलनेस। वो जब गुस्सा करते थे तो लगता था सचमुच गुस्से में हैं, जब वो रोते थे तो लगता था सचमुच टूट गए हैं, और जब वो चुप रहते थे तो उनकी साइलेंस भी डायलॉग बन जाती थी। नाना पाटेकर जिनकी पहचान किसी ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरो जैसी तो नहीं थी, ना टिपिकल चॉकलेटी बॉय इमेज, ना बड़े बड़े रोमांटिक सॉन्ग्स, ना सुपरस्टार बनने की कोशिश, उनकी ताकत थी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को इतना रियल बना देते थे कि हमें एक्टर दिखाई देना बंद हो जाता था, और शायद थिएटर ने उन्हें यही सिखाया था। पहले आदमी को समझो फिर किरदार निभाओ। उनकी करियर जर्नी में एक और इंटरेस्टिंग बात है, नाना सिर्फ एक्टर नहीं थे, उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। 1991 में उन्होंने प्रहार द फाइनल अटैक डायरेक्ट की, और यही वो नाना थे जो सिनेमा को सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे से भी समझते थे।
3: साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है।

0: चक्कनों को आज के दिन ही पैदा होना।
1: दोस्तों, नाना पाटेकर की आवाज जब गूंजती थी तो पर्दा बड़ा लगने लगता था। वाकई उनके जाने की खबर के बाद शायद उनकी फिल्मों को फिर से देखने की इच्छा होने लगी है। परिंदा में अन्ना को देखिए, क्रांतिवीर में प्रताप की आग को महसूस कीजिए, प्रहार में सैनिक की कठोरता समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वाकई ही आप नाना पाटेकर को पाएंगे कि वो क्या दमदार एक्टिंग करते थे, वो जीते थे अपने किरदार को। अब तक 56 में साधु आगाशे की आंखों के पीछे छिपी तकान पढ़ने की कोशिश भी आप कर सकते हैं दोस्तों, और नट सम्राट में गणपत राव के टूटते हुए संसार के साथ बैठने की कोशिश भी, और शायद वेलकम में उदय शेट्टी के साथ फिर से हंसने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही तो वो बड़े कलाकार की सबसे सुंदर विरासत होती है। उनके जाने के बाद भी उनके पास लौटने के लिए हमारे पास उनकी कला ही तो बची होती है ना दोस्तों।

0: दोस्तों उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी नीलकांति पिछले 35 सालों से उनसे अलग रह रही हैं ड्यू टू सम कॉन्ट्रोवर्सीज जो कि उनकी लाइफ में हमेशा से बनी रही। एक बेटा है मल्हार जो फिल्मों में एक्टिव है और उनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहा। वो असाधारण अभिनय के लिए जाने जाते रहे हैं। भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने नाना पाटेकर के लिए क्या कहा, आइए सुने।
1: साथियों, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

दोस्तों, आज हम नाना पाटेकर साहब की जिंदगी और उनके यादगार किरदारों को याद कर रहे हैं तो दिल भारी हो रहा है। 8 अक्टूबर 2026 को उन्होंने गोवा में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव देह जो पूना के दोंजे गांव स्थित उनके फार्म हाउस में ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। लेकिन दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते, वे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। नाना पाटेकर साहब भी उन्हीं में से एक थे। उनकी बुलंद आवाज, उनकी आंखों का दर्द, उनके दमदार डायलॉग्स और उनके निभाए हुए किरदार हमारे साथ हमेशा रहेंगे।

मिलेंगे अगले फ्राइडे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई बातों और कुछ पुराने सुनहरे नकमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और नाना पाटेकर साहब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।